0: sound to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8 a.m.
3: City FM 89.
4: Trending today.
5: The release date has been announced for a new film inspired by band Green Day. The film has been in the works since early last year and will be out on August 14th.
2: City FM 89.
6: You got me going crazy.
7: Pura hafta. Rapta barkarar. Jazz lajawab plus offer ke saath. Abhi *5655 hash dial karo. Aur pao 8 GB data. 4000 jazz minutes aur SMS. Aur 80 dusre network minutes. सिर्फ 370 रुपए के लोड में बस ऑफर लगाओ और रहो कनेक्टेड जैस के साथ आपकी मेरी हम सबकी सुपर पावर शरायतो जवाबित लागू है
8: ना किदार ना इंतजार अब सफर होगा स्मार्ट सिर्फ एयरब्लू के साथ एयरब्लू मोबाइल ऐप अभी डाउनलोड करें अपना टिकट बुक करें अपनी पसंदीदा सीट का इंतखाब करें और ऑनलाइन चेक इन करें आसानी के साथ कभी भी कहीं भी ऐप स्टोर या गूगल प्ले से अभी एयरब्लू ऐप डाउनलोड करें और पाएं फ्री टिकट्स जीतने का मौका
9: क्लाइमेट चेंज आज पूरी दुनिया के लिए एक संगीन चैलेंज बन चुका है शदीद गर्मी बेवक्त बारिशें सैलाब खुश्कसाली और फजाई आलूदगी इंसानी जिंदगी और माहौल को मुतासिर कर रहे हैं पाकिस्तान खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा इन मौसमी तब्दीलियों के असरात को शिद्दत से महसूस कर रहा है लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद सूबे में बिलियन ट्री सुनामी और 10 बिलियन ट्री प्रोग्राम जैसे मंसूबों के जरिए जंगलात में इजाफा किया गया जो माहौल के तहफ्फुज और कार्बन के इखराज को कम करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं साफ तवानाई सोलराइजेशन और माहौल दोस्त इकदामात एक बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद हैं आएं ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं पानी और बिजली का ज़िया कम करें और अपने माहौल को साफ रखें क्योंकि आज का एक मुसबत कदम कल आने वाली नस्लों के लिए महफूज और सरसब्ज मुस्तकबिल की जमानत बन सकता है
10: ये पैगाम महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से पेश किया गया
4: City FM 89
2: We're playing your song
3: You're listening to
0: Non-stop hits
11: No talk No talk No talk No talk No talk Just you and the music Back to back

0: City FM 89.
1: सिंध का स्टाइल ही अलग है और अब ऑफर भी सिंध हफ्तावार प्लस ऑफर से मिले 25 GB डेटा बशमूल 10 GB व्हाट्सएप 1000 तमाम नेटवर्क मिनट्स और SMS और तो और 20,000 रुपए की हैंडसेट इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री तो अभी डायल करो *4066# और पूरा हफ्ता एंजॉय करो ये ऑफर सिर्फ 470 रुपए के लोड में जैज मेरी सुपर पावर ये ऑफर मखसूस इलाकों तक महदूद है

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
4: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
5: A new era begins.
6: City FM 89, we're playing your song.
7: You're listening to
8: Non-Stop Hits.

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
3: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
4: City FM 89. We're playing your song.
5: You're listening to
6: Non-Stop Hits.
7: No talk.
8: No talk.
9: No talk.
8: No talk.
7: Just you
8: and the music.
7: Back to back starts now.

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
4: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
5: A new era begins.
6: City FM 89.
7: You're listening to
8: Non-Stop Hits.

0: ఎస్ హే నా
1: సిరీ 89
0: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना
2: यू आर लिसनिंग टू सिटी एफएम 89
3: वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग
1: यू आर लिसनिंग टू
4: नॉन स्टॉप हिट्स
5: न्यू टॉक न्यू टॉक न्यू टॉक न्यू टॉक न्यू टॉक जस्ट यू एंड द म्यूजिक
6: बैक टू बैक स्टार्ट्स नाउ

0: City FM 89.
1: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैस कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैस कैश है ना।

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
3: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
4: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
5: In intense heat, citizens are advised to take special precautionary measures between 11 a.m. and 4 p.m. Avoid going outdoors unnecessarily. Wear light clothing. Keep your head covered. Avoid strenuous physical activity in direct sunlight. And take special care of children, the elderly, and sick individuals. Drink plenty of water and stay safe. This public awareness message is presented in collaboration with Government of Sindh, PDMA, Commissioner Karachi, K Electric, and Selani Welfare Trust.
6: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
7: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
8: A new era begins.
9: You're listening to City FM 89.
10: You're listening to
11: Nonstop Hits.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 2:30 p.m.
3: This time check was brought to you by Easy Paisa.
4: Tap karo your Easy Paisa debit card. Easy Paisa Digital Bank. Easy Wala Bank.
2: City
5: FM 89.
6: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
7: City FM 89.
8: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
9: नई स्कीम,
10: कमिटी,
8: लाड बनाए फरो,
10: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो।
11: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैशबैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक। शराइत ज़वाबित लागू है।
6: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
12: City FM 89, we're playing your song.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.
13: No talk.
14: Just you
13: and the music.
14: Back to back
13: starts now.

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
1: When I grow up, I want to be strong.
3: For many children in Pakistan, that chance is already slipping away. 4 in 10 children under 5 suffer from stunting.
1: I want to learn big things.
3: Yet more than half of our children lack essential nutrients like iron, vitamin A and zinc, affecting how they grow, think and learn.
1: I want to be the fastest.
3: And nearly 1 in 6 children suffer from wasting, a severe form of malnutrition that weakens growing bodies.
1: I want to grow up like everyone else.
3: Because every child deserves a chance to grow, learn and thrive. Act now for the foundations of our nation.
4: Nurture today, strengthen tomorrow.
3: Act, a Dawn Media initiative.
5: City FM 89.
3: You're listening to
6: Non-Stop Hits.
7: No talk.
8: Just you
7: and the music.
8: Back to back
7: starts now.

0: Groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 5 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: You got me going crazy.
6: Coming up next.
7: Full disclosure.
8: City FM 89. Trending today.
9: The release date has been announced for a new film inspired by band Green Day. The film has been in the works since early last year and will be out on August 14th.
8: City FM 89.
10: Chicken pox yaad hai. Ye shingles banke wapas aa sakta hai. कभी सोचा भी नहीं था. तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें.
11: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएसके पाकिस्तान की जानिब से है. मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
12: पीता

0: ऐप डाउनलोड करें और पाएं फ्री टिकट्स जीतने का मौका.
1: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
2: नई स्कीम,
3: कमिटी,
4: लाड बनाए फरो.
5: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो.
6: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ.
5: आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक. इजी वाला बैंक.
6: शराइत ज़वाबित लागू हैं.
7: सिटी एफएम 89
8: ऑन द डायल.
9: Hello, hello, Pakistan, and a very happy Saturday. You are tuned into Full Disclosure on City FM 89 with me, your host, Saba Banu Malik. Let's kick it off with a little Lil Uzi Vert. Here he is with I Just Wanna Rock.

0: Pakistan.
1: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Mega Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
2: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी जैस कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैस कैश है ना।
3: 500 ml बनाए 20 और 800 ml बनाए 32 ग्लास।
4: कशी जामे शीरी सब पीते हैं।
2: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी जैस कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैस कैश है ना।
5: ड्यूलक्स दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी, आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से, जैसे बिल्कुल नया।

0: perfect antidote to your road rage. Your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 5:30 p.m.
3: This time check was brought to you by Easy Paisa.
4: Tap karo your Easy Paisa debit card. Easy Paisa Digital Bank. Easy Wala Bank.
5: City FM 89.
6: 500 ml banaye 20 aur 800 ml banaye 32 glass.
7: Kashi jame shiri sab peete
8: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Mega Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
9: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे अभी जैस कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैस कैश है ना
10: ना किदार ना इंतजार अब सफर होगा स्मार्ट सिर्फ एयरब्लू के साथ एयरब्लू मोबाइल ऐप अभी डाउनलोड करें अपना टिकट बुक करें अपनी पसंदीदा सीट का इंतखाब करें और ऑनलाइन चेक इन करें आसानी के साथ कभी भी कहीं भी ऐप स्टोर या गूगल प्ले से अभी एयरब्लू ऐप डाउनलोड करें और पाएं फ्री टिकट्स जीतने का मौका
11: लाइफ लाइफ रिफ्रेशिंग
12: गुलाब और संदल के खालिस अरकियात

0: The perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: Pura hafta. Rabta barkarar. Jazz lajawab plus offer ke saath. Abhi *5655 hash dial karo. Aur pao 8GB data. 4000 jazz minutes aur SMS. Aur 80 dusre network minutes. सिर्फ 370 रुपए के लोड में बस ऑफर लगाओ और रहो कनेक्टेड जैस के साथ आपकी मेरी हम सबकी सुपर पावर शरायतो जवाबित लागू हैं।

0: Pakistan.
1: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Mega Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
2: Dulux de raha hai paint ki 12 saal tak ki warranty. Aapka ghar rahe mehfooz paint ki har jhinjhat se. Jaise bilkul naya.
3: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी जैस कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैस कैश है ना।
4: ना किदार ना इंतजार, अब सफर होगा स्मार्ट सिर्फ एयरब्लू के साथ। एयरब्लू मोबाइल ऐप अभी डाउनलोड करें, अपना टिकट बुक करें, अपनी पसंदीदा सीट का इंतखाब करें और ऑनलाइन चेक इन करें आसानी के साथ, कभी भी कहीं भी। ऐप स्टोर या गूगल प्ले से अभी एयरब्लू ऐप डाउनलोड करें और पाएं फ्री टिकट्स जीतने का मौका।
5: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
6: नई स्कीम,
7: कमिटी,
5: लाड बनाए फरोख।
7: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैशबैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक। शराइत जवाबित लागू है।
8: क्लाइमेट चेंज आज पूरी दुनिया के लिए एक संगीन चैलेंज बन चुका है। शदीद गर्मी, बेवक्त बारिशें, सैलाब, खुश्क साली और फजाई आलूदगी इंसानी जिंदगी और माहौल को मुतासिर कर रहे हैं। पाकिस्तान, खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा, इन मौसमी तब्दीलियों के असरात को शिद्दत से महसूस कर रहा है। लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद सूबे में बिलियन ट्री सुनामी और 10 बिलियन ट्री प्रोग्राम जैसे मंसूबों के जरिए जंगलात में इजाफा किया गया, जो माहौल के तहफ्फुज और कार्बन के इखराज को कम करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। साफ तवानाई, सोलराइजेशन और माहौल दोस्त इकदामात एक बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद है। आएं, ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं, पानी और बिजली का ज़िया कम करें और अपने माहौल को साफ रखें, क्योंकि आज का एक मुस्बत कदम कल आने वाली नस्लों के लिए महफूज और सरसब्ज मुस्तकबिल की जमानत बन सकता है।
9: ये पैगाम महकमा इत्तला'आत व ताल्लुकात आमा खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से पेश किया गया।
10: City FM 89.
11: You're listening to
12: Full Disclosure with Sabah Banu Malik.

0: Perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89, we're playing the song.
5: Trending today.
6: The release date has been announced for a new film inspired by band Green Day. The film has been in the works since early last year and will be out on August 14th.
5: City FM 89.
4: We're playing your song.
7: Chicken pox yaad hai. Ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. कभी सोचा भी नहीं था. तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें.
8: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएस के पाकिस्तान की जानिब से है. मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
9: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर. इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
10: सिंध का स्टाइल ही अलग है और अब ऑफर भी. सिंध हफ्तावार प्लस ऑफर से मिले 25 GB डेटा बशमूल 10 GB व्हाट्सएप, 1000 तमाम नेटवर्क मिनट्स और SMS, और तो और 20,000 रुपए की हैंडसेट इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री. तो अभी डायल करो *4066# और पूरा हफ्ता एंजॉय करो ये ऑफर सिर्फ 470 रुपए के लोड में. जैज, मेरी सुपर पावर. ये ऑफर मखसूस इलाकों तक महदूद है.
11: 500 ml बनाए 20 और 800 ml बनाए 32 ग्लास.
12: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो.
13: नई स्कीम,
14: कमिटी,
12: प्लाट बनाए फरो.
14: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो.
15: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ. आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक. इजी वाला बैंक.
16: शराइत ज़वाबित लागू हैं.
17: अवेल फ्लैट 25% एंड 40% ऑफ एट द डाइनर्स मेगा फेस्टिव सेलिब्रेशन. हरी अप एंड विजिट स्टोर नाउ और शॉप ऑनलाइन एट diners.com.pk. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: Hire Kanaya No Frost IoT Refrigerator, jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein, aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
3: पूरा हफ्ता राब्ता बरकरार जैज लाजवाब प्लस ऑफर के साथ अभी *5655 हैश डायल करो और पाओ 8 GB डेटा 4000 जैज मिनट्स और SMS और 80 दूसरे नेटवर्क मिनट्स सिर्फ 370 रुपए के लोड में बस ऑफर लगाओ और रहो कनेक्टेड जैज के साथ आपकी मेरी हम सबकी सुपर पावर शरायतो जवाबित लागू है
4: 500 ml बनाए 20 और 800 ml बनाए 32 ग्लास

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।

समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल। cool.

0: పాకిస్తాన్.
1: గులాబ్ اور سندل کے خالص حرکیات
2: یہ نیچرل ہے
3: بھی تو بہتر ہے.
2: لائٹ لائٹ ریفریشنگ کرشی جامی شیری.
4: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Mega Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
5: Dulux de raha hai paint ki 12 saal tak ki warranty. Aapka ghar rahe mehfooz paint ki har jhinjhat se. Jaise bilkul naya.
6: Dulux, Dulux, Dulux.
7: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना.

0: आए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो।
2: नई स्कीम,
3: कमिटी,
4: लाड बराए फरो।
5: ये मुफ्त इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो,
6: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
7: शराइत ज़वाबित लागू हैं।
8: City FM 89
9: sounds different.
10: You're listening to
11: Full Disclosure with Saba Banu Malik.
12: That was Ariana Grande, Into You. Up next, here's Major Lazer with Particular.

0: چلی ساری.
1: City FM 89.
2: It's 7 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: Coming up next.
1: Non-stop hits.
6: City FM 89. We're playing
7: the song. Trending today.
8: The release date has been announced for a new film inspired by band Green Day. The film has been in the works since early last year and will be out on August 14th.
7: City FM 89.
9: Hired No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
10: सिंध का स्टाइल ही अलग है और अब ऑफर भी सिंध हफ्तावार प्लस ऑफर से मिले 25 GB डेटा बशमूल 10 GB व्हाट्सएप 1000 तमाम नेटवर्क मिनट्स और SMS और तो और 20,000 रुपए की हैंडसेट इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री तो अभी डायल करो *4066# और पूरा हफ्ता एंजॉय करो ये ऑफर सिर्फ 470 रुपए के लोड में जैज मेरी सुपर पावर ये ऑफर मखसूस इलाकों तक महदूद है
11: 500 ml बनाए 20 और 800 ml बनाए 32 ग्लास
12: कशी जामे शीरी सब पीते
13: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना
14: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Mega Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.

0: Pakistan.
1: Introducing the all-new Nothing Phone 4A or 4A Pro. Sleek design, ultra-smooth performance, aur ab Jazz ke saath 5G ready. Ab available hai Jazz Experience Centers par. Affordable price ke saath. Chahe full payment karein ya easy post-pay by Jazz installment plan choose karein. Decision aapka. Jazz, aapki, meri, hum sabki superpower.
2: 500 ml banaye 20 aur 800 ml banaye 32 glass.
3: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Mega Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
4: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे। क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
5: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो।
6: नई स्कीम।
7: कमिटी।
5: लाड बनाए फरो।
7: ये मुफ्त की इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो।
8: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक। इजी वाला बैंक।
9: शरायत जवाबित लागू है।
10: सिटी एफएम 89, वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग।
11: You're listening to
12: Non-Stop Hits.
13: No talk.
14: Just you
13: and the music.
14: Back to back
13: starts now.

0: Pakistan.
1: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Mega Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
2: कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।

0: Pakistan.
1: Light, light, refreshing. Kashi Jami Shiri.
2: Gulab aur sandal ke khalis harkiyat.
1: Ye natural hai.
3: Jabhi toh behtar hai.
1: Light, light, refreshing. Kashi Jami Shiri.
4: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Mega Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
5: Dulux de raha hai paint ki 12 saal tak ki warranty. Aapka ghar rahe mehfooz paint ki har jhinjhat se. Jaise bilkul naya.
6: Dulux, Dulux, Dulux.
7: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।

0: Choose your song.
1: Only on City FM 89. It's 8:30 PM.
2: This time check was brought to you by Easy Paisa.
3: Tap karo your Easy Paisa debit card. Easy Paisa Digital Bank. Easy Wala Bank.
1: City FM 89. We're playing the song.
4: सिंध का स्टाइल ही अलग है और अब ऑफर भी सिंध हफ्तावार प्लस ऑफर से मिले 25 GB डेटा बशमूल 10 GB व्हाट्सएप 1000 तमाम नेटवर्क मिनट्स और SMS और तो और 20,000 रुपए की हैंडसेट इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री तो अभी डायल करो *4066# और पूरा हफ्ता एंजॉय करो ये ऑफर सिर्फ 470 रुपए के लोड में जैज मेरी सुपर पावर ये ऑफर मखसूस इलाकों तक महदूद है
5: 500 ml बनाए 20 और 800 ml बनाए 32 ग्लास
6: Introducing the all-new Nothing Phone 4A or 4A Pro. Sleek design, ultra-smooth performance. Aur ab Jazz ke saath 5G ready. Ab available hai Jazz Experience Centers par. Affordable price ke saath. Chahein full payment karein ya easy post-pay by Jazz installment plan choose karein. Decision aapka. Jazz, aapki, meri, hum sabki superpower.
7: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Mega Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैस कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैस कैश है ना।

0: समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैस कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैस कैश है ना।
2: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
3: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
4: A new era begins.
5: City FM 89.
6: On the dial. You're listening to
7: Non-Stop Hits.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
3: Attention, the standard commute has been decommissioned.
4: Introducing a system override for your ears.
5: New energy, new perspective.
6: The same 24 hours, but a completely different vibe.
7: Join ABD as he takes over the streets.
8: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
9: your evenings just got an upgrade.
7: The Rush Hour with ABD.
10: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
9: Tune in or get left behind.
2: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
11: City FM 89, we're playing your song.
1: You're listening to
12: Non-Stop Hits.

0: your song.
1: Only on City FM
2: 89. कब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे? अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।

0: AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम. AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम.
1: City FM 89, we're playing your song.
2: You're listening to
3: Beach Camp.

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: 500 ml बनाए 20 और 800 ml बनाए 32 ग्लास।
3: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
4: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
5: A new era begins.
6: City FM 89.
7: Sounds different.
8: You're listening to
9: Beach Camp.